0: tertinggi 101.9 Air Tawar Lok Heng Penawar.
1: Rani, देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।